0: जिसकी वजह से बस्ती के इतने करीब इसकी अनुमति मिल गई, ये मैं नहीं समझ सकता।
1: सिर्फ यहाँ का नजारा नहीं बल्कि आवाजें भी बदल गई हैं।
0: इतनी परेशान करने वाली आवाजें हैं। मैं नाराज हूँ क्योंकि इससे यहाँ हमारी प्रॉपर्टी की कीमत घट जाएगी। नाराज इसलिए हूँ क्योंकि इसने हमसे जंगल को दूर कर दिया है।
1: नॉर्थ वर्जीनिया का ये इलाका डेटा सेंटरों का ग्लोबल हब बन गया है। यही डेटा सेंटर उबर, नेटफ्लिक्स और अमेजोन जैसी कंपनियों को इन्फॉर्मेशन की ताकत देते हैं। इसके साथ ही AI एप्लीकेशन से मिली जानकारियां भी यहीं जमा और प्रोसेस होती हैं। AI डेटा सेंटरों को खास तौर से भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होती है।
2: वो है डेटा सेंटर, देखिए उस दिशा में, उधर और हमारे पीछे भी, तीनों तरफ।
1: एलेना श्लॉसबर्ग भी परेशान है। वर्जीनिया के 600 डेटा सेंटरों में से 260 केवल दो आवासीय समुदायों में है। 1990 के दशक में ये इलाका अमेरिका के पहले बड़े इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर AOL का ठिकाना था। आज ये AI के विकास का केंद्र है।
2: देखिए एक और अमेरिकी झंडा, हम दुनिया के सबसे अमीर उद्योग बना रहे हैं, उसकी कीमत चुका रहे हैं, तो हम सब अमेरिका का हिस्सा हैं।
1: डेटा सेंटरों के जमावड़े के लिहाज से उत्तर वर्जीनिया सबसे आगे है। पूरी दुनिया के 14% डेटा सेंटर यहीं पर हैं। इन सेंटरों को चलाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये काफी ज्यादा बिजली खर्च करते हैं और इसका असर स्थानीय लोगों पर भी हो रहा है।
2: समुदाय एक ऐसे उद्योग के साथ सीधे मुकाबले में है जिसे अभूतपूर्व ऊर्जा और पानी की जरूरत है। आमतौर पर आप जिन चीजों पर निर्भर हैं, आपकी किफायती स्वच्छ ऊर्जा वो इस ग्राहक के उपयोग में जा रही है। इस वजह से आप अपना यूटिलिटी बिल बढ़ता देख रहे हैं।
1: बिजली की कीमत बीते 5 वर्षों में 30% तक बढ़ चुकी है। ऊर्जा की भारी मांग AI के उभार का सबसे बड़ा नुकसान है।
0: ये आर्थिक विकास के मामले जैसा दिखता है, हालांकि आम लोगों पर पड़ने वाले असर के लिहाज से इसे नहीं देखा गया। उद्योगों को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होती है। इसमें बढ़ोतरी का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है और इसे मापा भी जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी पहले नहीं था जिससे इसकी तुलना की जा सके।
1: हालांकि कुछ लोगों को फायदा भी हुआ है। ये लोग उनमें शामिल हैं जो डेटा सेंटर और पावर प्लांट बनाने के लिए खेती की जमीन बेच रहे हैं।
3: मेरे पास कई पीढ़ियों से खेती की जमीन थी और दुर्भाग्य से मेरे बच्चे और उनके बच्चों में इसे लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है।
4: हम ऐसा समाधान लाए जिसमें दोनों का फायदा है। देश को कमाई होगी जो उन्हें लोगों को वेतन देने में मदद करेगा। सारे कर्मचारियों को ज्यादा पैसा मिलेगा, पार्क बेहतर होंगे, सबके लिए अच्छे स्कूल होंगे और हाँ, हम पैसा भी बनाएंगे।
1: डेटा सेंटर सरकार के लिए हर साल $1 अरब से ज्यादा का टैक्स जुटाते हैं। निर्माण का कार्य 24 घंटे चल रहा है। हालांकि इस विकास की एक कीमत है। एक अकेला AI डेटा सेंटर एक पूरे शहर के बराबर बिजली खर्च कर सकता है। ग्रेग पीरियो जब 2012 में खरीदे अपने इस मकान से पहली बार
5: डेटा सेंटर चाहिए सेफ्टी है या जड़ी बाकी सारी चीजा ने वो ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੀਆਂ ਜੋਬਸ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਨਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ AI ਸਮਾਰਟ ਚਸ਼ਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪ ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।
6: AI ਸਮਾਰਟ ਗਲਾਸਿਸ ऐसे चश्मे जो कॉल करने बिना हाथों का इस्तेमाल किए

एआई से बात करने और केवल फ्रेम को छूकर फोटो और वीडियो लेने की सुविधा देते हैं, लेकिन इस तकनीक से प्राइवेसी के उल्लंघन और उत्पीड़न की भी चिंता है। दिल्ली में रहने वाले 29 साल के ट्रांसजेंडर स्काई, ट्रांस फेमिनिन ग्राफिक डिजाइनर शबनम और कोलकाता की एक 35 साल की लेक्चरर, इन तीनों की एआई स्मार्ट चश्मे से चोरी छिपे रिकॉर्डिंग की गई और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। स्काई के साथ हुई घटना अप्रैल महीने की है, जब वो दिल्ली के जंतर मंतर पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन कानून 2026 के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। स्काई के मुताबिक एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें अनिरुद्धाचार्य और पूकी बाबा कहने लगा। पूकी बाबा हिंदू धर्मगुरु अनिरुद्धाचार्य के लिए इंटरनेट पर इस्तेमाल होने वाला एक लोकप्रिय नाम है। करीब एक महीने बाद इस घटना की रील इंस्टाग्राम पर वायरल हुई, तब उन्हें पता चला कि उनका वीडियो बनाया गया था। इसी प्रदर्शन में उस इंस्टाग्राम अकाउंट को चलाने वाले व्यक्ति ने ट्रांस फेमिनिन ग्राफिक डिजाइनर शबनम की भी चोरी छिपे रिकॉर्डिंग की थी। शबनम के वीडियो पर कई लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। अगले कुछ दिनों में स्काई ने देखा कि दोनों वीडियो के कुछ सेकंड के हिस्से को कई दूसरे अकाउंट ने एडिट करके दोबारा पोस्ट किया, उनसे मीम भी बनाए गए। स्काई का कहना है कि वीडियो और उन पर लिखे गए कमेंट से उन्हें अपमानित महसूस हुआ, उन्हें बहुत अधिक तनाव और ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, असल जिंदगी में भी लोगों ने उन्हें परेशान किया। इसी तरह कोलकाता की लेक्चरर के साथ भी हुआ। 11 जून की शाम वो शहर की एक कम रोशनी वाली गली से अपने घर जा रही थी, उसी समय एक व्यक्ति ने उनका रास्ता रोक लिया और उनसे बात करने की जिद करने लगा। लेक्चरर ने कहा उसके हाथ में ऐसा कोई कैमरा या दूसरा उपकरण दिखाई नहीं दे रहा था जिससे मुझे लगे कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगले दिन लेक्चरर के एक स्टूडेंट ने उन्हें बताया कि इस मुलाकात का वीडियो इंस्टाग्राम पर है। लेक्चरर को पता चला कि उस व्यक्ति ने उनका पीछा करते हुए चोरी छिपे रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। उसने दोनों के बीच हुई पूरी बातचीत रिकॉर्ड की थी, उसने बाद में वीडियो को एडिट कर दिया। वीडियो से वो हिस्से हटा दिए गए जिनमें वो लगातार उनके पीछे पड़ा था और वह असहज दिखाई दे रही थी। एडिट किए गए वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अपनी मर्जी से आराम से बात कर रहे हों। वीडियो बनाने वाले शख्स ने इसे उम्र में बड़ी महिलाओं से कैसे बात शुरू करें सिखाने वाले वीडियो के तौर पर पोस्ट किया था। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने लेक्चरर के शरीर और शक्ल सूरत पर टिप्पणियां की। लेक्चरर इस घटना से डर गई थी, उन्होंने पुलिस के पास जाने का फैसला किया, लेकिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराना भी आसान नहीं था। काफी कोशिश के बाद उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उस पर गलत तरीके से रास्ता रोकने, चोरी छिपे देखने या रिकॉर्डिंग करने और पीछा करने के आरोप लगाए गए। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिन बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखा गया, इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। मिशी चौधरी टेक्नोलॉजी से जुड़े मामलों की वकील है। वो कहती हैं कि एआई चश्मों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। उनके मुताबिक ऐसी रिकॉर्डिंग करना अक्सर बहुत गलत होता है, लेकिन कानून में से साफ तौर पर अपराध नहीं माना गया है। उन्होंने कहा कि वीडियो में क्या दिखाया गया है इसके आधार पर मानहानि, चोरी छिपे देखने या रिकॉर्डिंग करने, पीछा करने और आपराधिक धमकी जैसे अपराधों का मामला बन सकता है, लेकिन किसी सार्वजनिक जगह पर चोरी छिपे रिकॉर्डिंग करने से साफ तौर पर रोकने वाला कोई खास कानून नहीं है। इसी वजह से निजता के उल्लंघन से जुड़े ऐसे मामले कानूनी रूप से ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां ये साफ नहीं होता कि किस कानून के तहत कार्रवाई की जाए। चोरी छिपे रिकॉर्डिंग का सामना करने वाले तीनों लोगों ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे वीडियो हटवाना भी बेहद मुश्किल था। मेटा के नियम उत्पीड़न की इजाजत नहीं देते, लेकिन इंस्टाग्राम पर किसी पोस्ट की शिकायत करते समय निजता के उल्लंघन या स्मार्ट चश्मे से बिना सहमति रिकॉर्डिंग की कोई अलग कैटेगरी नहीं है। इस वजह से लोगों को अपनी शिकायत बुलिइंग और उत्पीड़न की कैटेगरी में दर्ज करनी पड़ती है। स्काई और शुभनम ने इंस्टाग्राम पर शिकायत दर्ज की थी, उनके वीडियो प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसके बावजूद दोनों वीडियो करीब एक महीने तक ऑनलाइन रहे। हालांकि इन वीडियो के एडिट किए गए कई रूप अब भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। महिला लेक्चरर वाला वीडियो 2 महीने से ज्यादा समय तक ऑनलाइन रहा, इस दौरान उसे 25 लाख बार देखा गया। उनके दोस्तों ने इंस्टाग्राम पर शिकायत की थी कि वीडियो उसके नियमों का उल्लंघन करता है, इसके बाद भी वीडियो नहीं हटाया गया। जब महिला लेक्चरर पुलिस के पास गई और एक पुलिस अधिकारी ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को सीधे फोन किया, तब उसने वीडियो हटाया। इंस्टाग्राम और फेसबुक की मालिक कंपनी मेटा का कहना है कि उसके एआई चश्मों को बनाते समय शुरू से ही निजता का ध्यान रखा गया है। मेटा के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया, हर चश्मे में रिकॉर्डिंग बताने वाली एक एलईडी लाइट लगी है। फोटो या वीडियो बनाते समय ये लाइट जलती बुझती

0: ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से

0: इश्यूज है उसके बारे में रियली बात करी है.
1: पेटी आर के उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो बहुत अच्छा लगा हमें, तो हम उस वे में उनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ कोई हमारे लिए भी खड़ा है यहाँ पे, कोई हमको डिवाइड नहीं कर रहा है कि हमारी बहन है बेटी है, वो हमें एज अ वुमेन ही देखते हैं.
0: मेलोनी पर टिप्पणी की थी हाँ, उसको लेकर भी उनको काफी घेरा गया कि आप एक तरफ स्मैश द पैट्रियार्की की बात करते हैं और फिर ऐसी पैट्रियार्कल कमेंट्स कर देते हैं, तो आपको लगता है कि उनको नहीं करना चाहिए था अगर एक तरफ वो ऐसी बातें कर रहे हैं?
2: अब अच्छी बात है कि वो युवाओं के इस दर्द को दुख को समझ रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी आवाज को सुना जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन दिक्कत ये है कि पहले युवाओं ने आवाज उठाई है, छात्रों ने अपने हित की लड़ाई रोडों पर आकर लड़ी है, तो वहाँ विपक्ष कहीं अपनी भूमिका नजर नहीं आई, कभी कोई भूमिका उनकी नजर नहीं आई.
0: तो ये इतनी सारी लड़कियां यहाँ पे क्यों जुटी हुई हैं? मतलब आप लोग
3: क्योंकि गुंज कार्यक्रम में आए हैं राहुल गांधी,
0: अभी यहाँ से निकल रहे
3: हैं. हाँ, यहाँ से निकलने वाले हम सब.
0: तो किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या क्या?
3: मैं तो वैसे स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा कॉलेज कम्प्लीट हुआ है.
0: क्या पढ़ाई करती हैं?
3: मेरा अभी बीएससी कम्प्लीट हुआ है होलकर साइंस कॉलेज से.
0: अच्छा, ये अभी जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं इनको क्या बोला गया है वहाँ जाने के लिए, या अपनी मर्जी से सब इकट्ठा हुए हैं?
3: मर्जी से आए हैं, मैं भी अपनी मर्जी से आई.
0: तो आप लोग यहाँ पे क्यों अभी जुटी हुई हैं, क्या कारण है?
4: हमारे हक के लिए आए हम,
5: छात्रों की गूंज. हाँ, राहुल गांधी आएंगे हमारे बीच में, हमसे बात करेंगे, हम भी उनसे बात करेंगे. हमारे पेपर इतने लीक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सरकार हमारी बात ही नहीं मान रही है. मतलब तो छात्रों के विषय में कुछ ज्यादा सोचना चाहिए स्टूडेंट के बारे में.
0: इतनी लड़कियां एक साथ कैसे कलेक्ट हुई? कोई ग्रुप बनाया आप लोगों ने?
5: कोई ग्रुप नहीं बनाए,
0: सब ऑर्गेनिक है, सब अपने आप ही यहाँ इकट्ठा हो गए. तो भंवर कुआं का ही इलाका है और अभी यहाँ पे कुछ ग्रुप्स में लोग गुजर रहे हैं यहाँ से और नारे लगा रहे हैं.
6: गर्ल्स के लिए जरूर ई रिक्शाओं की व्यवस्था यहाँ पर रखी है और पिंक जोन यहाँ पर इस बार पहली बार बनाया जहाँ पर गर्ल्स को एक सेपरेट एंट्री दी जाएगी, तो गर्ल्स को थोड़ा सा सामने लाके इसमें इस कार्यक्रम को लेके जा रहे हैं हम लोग.
7: हम आईडी मैदान की तरफ आगे बढ़े ही थे कि हमें रास्ते में ये बैनर दिखा.
0: तो शहर में जगह जगह जहाँ आपको राहुल गांधी के इस छात्रों की गूंज से जुड़े पोस्टर्स और बैनर्स दिखाई देते हैं, वैसे ही मेरे पीछे जो ये बैनर आपको नजर आ रहा है, ऐसे भी बैनर्स कुछ जगहों पर हमें नजर आए जो राहुल गांधी के इस कार्यक्रम पर एक तरीके से निशाना साधते हैं. हालांकि ये बैनर्स किसने लगवाए हैं पता नहीं चलता, इसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है. तो ये इंदौर का आईडीए मैदान है, यहीं पर राहुल गांधी का ये कार्यक्रम होना है. शाम 5 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होनी है वैसे तो, और 7 बजे राहुल गांधी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, उनका संवाद शुरू होगा. लेकिन उसके पहले अभी शाम 4 बज रहे हैं और यहाँ के लोग बताते हैं कि दोपहर 12 बजे के बाद से यहाँ काफी भीड़ दिखाई दे रही है और अभी हम देख पा रहे हैं कि भीड़ काफी ज्यादा है. अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पहुँचे. आप कहाँ से आए हैं?
8: ग्वालियर से.
0: जी, क्या ऐसी चीज है जो आपको यहाँ खींच कर लाई? आप स्टूडेंट हैं, क्या करते हैं कुछ?
8: देखिए, मैं एक पीएससी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश पीएससी में पिछले 5 वर्षों से लगभग 110 पद, 106 पद, 56 पद, मतलब स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं उस हिसाब से वैकेंसीज ही नहीं आ रही हैं. वैकेंसीज आती हैं तो फिर टाइम पर जो कैलेंडर सरकार दी जाती है वो फॉलो नहीं किया जाता है. 5-5 साल तक ये पटवारी की जगह नहीं निकालते हैं, एसआई की जगह नहीं आती हैं.
0: कैसे इंश्योर कर रहे हैं आप वॉलंटियर, कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि ये इवेंट पॉलिटिकल ना बने? क्योंकि कुछ लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं, जैसे अभी आप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, तो ये इवेंट पॉलिटिकल ना हो इसको कैसे इंश्योर कर?
9: मैम, इधर इनका पर्सनल ओपिनियन है कि वो अपनी पार्टी को बिलोंग करते सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं. बाकी आप मेनली देखें तो आप रिस्टोरेंट आए मैम, यहाँ पर बोला गया कि 35 से बिलो जो अपर एज है उनको अलाउड नहीं है गया था. हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग केवल अंदर जाने के लिए कहा गया है क्योंकि प्रोग्राम में मेन यूथ के लिए किया गया है.
0: ठीक है, फिर हम भी अंदर होकर आते हैं. चलिए,

0: राज्यों में अब तक ये अभियान हो चुका है, ये पांचवा राज्य है। जो उम्मीद थी उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स क्राउड में नजर आ रहा है, वैसा रिस्पॉन्स?
1: रिस्पॉन्स तो बच्चों का रिस्पॉन्स देखकर वाकई ऐसा लगता है कि इन सबके मन में अपने भविष्य को लेकर एक बहुत गंभीर चिंता है और इसीलिए वो यहाँ आए हैं राहुल गांधी से संवाद कर।
0: छात्रों के गूंज इवेंट से आप लोगों ने गोल क्या सेट किया है अपनी पार्टी के लिए?
1: गोल पार्टी के लिए नहीं है, गोल इस नौजवान पीढ़ी के लिए है कि इनके आंसू पहुंचने हैं, इनके मन से कुंठा दूर करनी है। जो फ्रस्ट्रेशन, जो डेस्परेशन, जो डिप्रेशन आ रहा है नौजवानों, हमारा गोल है कि वो डिप्रेशन दूर होना जरूरी है।

0: कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कल्चरल इवेंट ज्यादा हो गया है, कॉन्सर्ट वगैरह.
1: आई गेस तो वो बुरा नहीं है, स्टूडेंट्स को ये भी पसंद आता है. और अगर छात्रों के गुंज वाले जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो अगर बच्चों की पसंद का भी ध्यान रख रहे तो उसमें बुरा क्या है.
2: प्रोग्राम्स हुए, डांस हुए, वो मेरे को सही नहीं लगा क्योंकि हर बच्चा यहाँ पे अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के आया है तो वो चाहता है कि उसको यहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट कंटेंट मिले, जो एकदम वैल्यूबल चीजें कंज्यूम करने आया है, वो यहाँ पे गाने वगैरह सुनने नहीं आया है.
0: पहली बार कोई नेता पैट्रियार्की के बारे में इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर बोल रहा है तो आप उसको कैसे देखती हैं?
2: पैट्रियार्की पर बोलना तो बिल्कुल सही बात है, बोलना ही चाहिए. बाकी मैम बोलने से कुछ नहीं होता है, ये सारी चीजें ना बहुत डीप रूटेड है. जब तक सर उसके लिए एक्शन नहीं लेंगे पैट्रियार्की, अभी अगर अपन देखें तो ये स्टेज पे सर के साथ, सर की जगह मैम भी हो सकते थे, प्रियंका मैम, बाकी सर ही क्यों है.
3: शाम के तकरीबन 7:30 बजे राहुल गांधी मंच पर पहुंचे और छात्रों से संवाद की शुरुआत हुई. राहुल गांधी ने सिस्टम पर सवाल उठाते हुए उन सभी लोगों पर निशाना साधा जो सिस्टम का हिस्सा हैं और इसे चला रहे हैं.
4: टॉप लेवल पर ये 6 लोग बैठे हैं, सिस्टम को चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी.
3: हालांकि कांग्रेस ने इस इवेंट को नॉन पॉलिटिकल बताया था, लेकिन इंदौर के इस कार्यक्रम में राजनीति भी नजर आई और पीएम मोदी पर कटाक्ष भी. बीजेपी नेताओं ने इसी को आधार बनाकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं.
5: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने अपनी झूठ की गूंज का कार्यक्रम किया, केवल अपने एजेंडे के आधार पर जनता के बीच भ्रम फैलाने की दृष्टि से बात कही.
6: राहुल गांधी जो मिमिक्री कर रहे, मैं तो ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्टी को छोड़कर स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी को तो उन्होंने बेरोजगार कर दिया है, कम से कम स्टैंड अप कॉमेडियन का रोजगार उनको मिले.
1: हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे आए हैं, हम चाहते हैं कि हम सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं. अगर ऐसा कहा जाए कि नहीं हम लोगों को घूस दी गई है यहाँ आने के लिए तो ये बिल्कुल गलत है.
7: मेरा ऐसा मानना है कि हर नेता को सुनना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे गवर्नमेंट में ना हो, अपोजिशन को भी सुनना चाहिए और जो इन प्रेजेंट है उसको भी सुनना चाहिए. तो बस उसी को सुनने के लिए हम लोग आए थे.
1: हमको ऐसा लगा नहीं था कि इतने सारे स्टूडेंट्स राहुल गांधी जी को सपोर्ट करेंगे.
8: हम लोग भी बस इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं, एजुकेशन की बातें सुन रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं और एग्जामों के बारे में बातें कर रहे हैं.
0: तो आज का पूरा दिन हमने इस कार्यक्रम को कवर किया और अब रात के 8:30 बज गए हैं. भीड़ धीरे धीरे छटना शुरू हो गई है, लेकिन अंदर जो नजारा था बहुत भीड़ थी और वैसी ही भीड़ बाहर भी नजर आ रही थी. हमने कई छात्रों से बात की, वो एक हद तक इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि उनके जो मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं इतने सालों से, उसे एटलीस्ट इस मंच पर, इतने बड़े मंच पर एड्रेस किया गया, उनकी बात सुनी गई. वहीं कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कहना था भीड़ को लेकर कि ऐसी भीड़ उन्होंने अपने करियर में बहुत सालों के बाद विटनेस की है और जो कि युवाओं की भीड़ है और एक हद तक ऑर्गेनिक भीड़ है.
9: देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के प्रोग्राम तो होते रहते हैं और उसमें यूथ भी आता है, लेकिन यूथ से जुड़े इश्यूज पे डायलॉग होना हो, वहाँ इतनी बड़ी संख्या में यूथ की उपस्थिति जो है वो मायने रखती है. जितने लोग इस पंडाल में उपस्थित थे उससे ज्यादा पंडाल के बाहर थे.
3: लेकिन इसी बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावों के नतीजों ने एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश की है. दूसरों चुनावों में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, तो फिर क्या छात्रों की गूंज में दिख रही युवाओं की भीड़ को युवाओं के बीच राहुल गांधी की बढ़ती स्वीकार्यता के तौर पर देखा जा सकता है, या फिर ये कार्यक्रम छात्रों की समस्याओं को आवाज देने का एक मंच भर है? तारिक खान के साथ प्रेरणा, BBC इंदौर.
10: सुरेश जी, एक खबर जड़ी है क्योंकि युवाओं की गल की जाए, स्टूडेंट्स की गलबात की जाए, जिस तरीके दे नाल एक गूंज गूंजी है, तो दूजे पासे रिजल्ट जड़े ने वो दिल्ली दे विच कुछ होर ही देखने नूं मिलदे पए आ. इस तरह दी जिहड़ी चीजां ने, आई थिंक वी चल रहे हालात, जिवें हालात बदलते हैं तो कुछ ना कुछ पता लगता रहेगा भी किस तरह पासे नूं जा रही चीजा. पढ़ाई की गल की है तो दूजे पासे एक पढ़ाई कराने वाले PhD दे प्रोफेसर जड़े ने ते ओ नाल दी नाल सब्जियां वेचण दा भी काम करदे आ, कहिंदे वी उहदे च गुजारा जिहड़ा नहीं हुंदा साडा. कुड़ियां दी गलबात कीती गई है ते पैट्रियार्की

पखच काफी तेजी नाल मुहिम चल रही है। सरकार भी अपना पक्ष रख रही है, विरोधी पार्टियां भी रख रही ने, यह सारा कुछ चल रहा। लेकिन कई बार कुछ चीजा दे विच एकजुटता विखाउण लई कुछ विरोधी भी जड़े ने जी वह एक मंच ते आ जाते हैं, तो इहदे विच अलबर्टा दे दो सबका प्रीमियर जो एक दूसरे दे विरोधी ने इस वेले, रेचल नॉटली अलबर्टा दी सबका प्रीमियर ते जेसन कैनी सबका प्रीमियर, दोवें अक्तूबर 19 दे रेफरेंडम तो पहला इकट्ठे होके अलबर्टा वासियां नूं इस रेफरेंडम बारे जागृत करनगे। ऑपोजिट साइड्स ने ते बिल्कुल वक्री विचारधारा नाल संबंधित, इन्होंने कैनेडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के नाल हाथ मिलाए ने ते कंपेन चलाई है अलबर्टा एंड कैनेडा स्ट्रोंगर टूगैदर इन टू द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ कंसर्न अलबर्टन्स। ये अलबर्टा प्रीमियर जड़े ने थां थां जाके गलबात कर रहे हैं, तो इस मुद्दे पर लोगों को जागृत कर रहे हैं कि कैनेडा दे नाल ही अलबर्टा की सरदारी है, तो यह जी सांझी मुहिम है इस विच सियासी वखरेवें भुला के एक जगह पर इकट्ठे होना तो कैनेडा नू एक जगह पर रखना एक बहुत वड्डी एग्जाम्पल जी है पेश कर रहा। यह जी मुहिम शुरू की जा रही है ये अलबर्टा वासियां नू यह सुनेहा दिता जा रहा कि जे अलबर्टा कैनेडा नालों वक्ख होने की कोशिश करता है तो ये नाल पूरे सूबे अते देश दे लोकां नू बहुत गंभीर आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पै सकता है। सो ये बड़े इशूज़ ने जिन्हां नू ये दो आगू चुक रहे ने, ते किन्ना क अपना यह सुनेहा देण दे विच सफल होणगे, अलबर्टा दे लोग इस नू किवें लैणगे, ये बहुत वड्डियां कहानियां ने। इस वेले होर खबरां वल जरा ध्यान करते हैं। कैनेडा दे विच जो पिछले सालां दे विच एक बहुत बड़ा बदलाव आया है वह है इमीग्रेशन नीतियां। नीतियां विच भावें ना भी इन्ना बड़ा बदलाव आया होवे पर ओवरऑल सीन जिहड़े ने बदल गए ने। विजिटर वीजे कोविड जां कोविड तो बाद बहुत वड्डी मात्रा दे विच कैनेडा वाले ने जारी किए, 10-10 साल के जिहड़े आम ट्रेंड बना के 10 साल का वीजा लादना वह लाए गए, तो विजिटर वीजा लई नियम जिहड़े ने हुण बहुत सख्त कर दिते गए ने। 2026 वास्ते जां गांह वास्ते स्क्रीनिंग प्रोसैस नूं बहुत टाइट किया जा रहा, तो कहा जा रहा कि यह ज़्यादा सेफ तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होगा। इमीग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीनशिप कैनेडा ने 2026 ले विजिटर वीजा की अर्जी प्रक्रिया को लेकर जो खुलासे किए हैं उस विच वीजा सिस्टम दे विच फ्रॉड नू रोकण लई ते सुरक्षा नू मजबूत करने लई नियमों नू बेहद सख्त किया। इस ताज़ा रिपोर्टा के मुताबिक 2026 के अखीर तक 5.8 मिलियन भाव तकरीबन 58 लाख विजिटर वीजा एप्लीकेशन आने का एसटीमेट लाए बैठे ने, जो कि पिछले साल नालों भी ज़्यादा। तो इन्नी वड्डी गिणती नूं ध्यान विच रखते हुए वीजा अफसरां नूं हरेक फाइल की जांच लई सख्त हदायतां जारी कीतियां गईआं ने। सरकारी दस्तावेजा तो लगता पता डॉक्यूमेंट्स तो कि जिहड़ा ओवरऑल वीजा पॉलिसी आ उहदे विच 40 तो वध इस तरह के जड़े यार्ड स्टिक ने मापदंड रखे गए ने, जिन्हां दे आधार ते नैशनल लैवल दे वीजा रूल्स जड़े ने तय किए जाते हैं। सो इंडिविजुअल तौर पर वीजा अप्लाई करने वाले हर बंदे दी एप्लीकेशन जड़ी है बहुत बरीकी नाल परखी जाती है। हुण इहदे विच की चीज़ों पर ध्यान किया जा रहा है, एक तो उसकी ट्रैवल हिस्टरी है, अपने देश नाल जिथे उन्हें आना वो नाल फैमिली दे तां कारोबार दे संबंध जिस विच ये पता लाना कि बंदा मुड़ जाऊगा, रुजगार सिक्ख्या
ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆਪ